0: अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल

0: पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
6: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
0: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सलाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मुंबई। 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। सुबह के 8:40 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई, मेरे यानी कि आरजे प्रिया के साथ। सोचिए ना, देखते ही देखते साल 2024 का छठा महीना खत्म होने को है, यानी आज है जून महीने का आखिरी दिन, तारीख 30 जून और दिन है मंगलवार। तो चलिए चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं आज की इस नई सुबह का धमाकेदार आगाज़।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल और FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। 8:55 सुबह के हो चुके हैं और श्रोताओं आज के दिन में क्या है स्पेशल, सुबह का वर्कआउट, पूरे घर का मैनेजमेंट, स्कूल कॉलेज जाने की भाग दौड़, मुंबई की बारिश, ऑफिस की मीटिंग और साथ ही इस रिमझिम बरसात में चाय पीने का प्लानिंग किसी खास खास के साथ। जो भी हो, मैं तो कहती हूँ कि आज का दिन अपने लिए चुरा लो, क्योंकि कल से जुलाई का नया पन्ना शुरू होने वाला है और जनवरी में जो रेजोल्यूशन लिए थे ना हमने, कोई दुबला होना चाहता था, कोई सक्सेस होना चाहता था, कोई पढ़ाई करना चाहता था, कोई न जाने क्या क्या करना चाहता था, अगर वो पूरे भी नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसलिए कहती हूँ कि आज का दिन खुद को एक और मौका देने का है। तो फिर चलिए इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ सुनते हैं और एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए और आप सभी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस मेरे पास पहुँच रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जरूर इन मैसेजेस को शेयर करूँगी। सुनते रहिए FM रेनबो आरजू प्रिया के साथ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। 9:01 हो चुके हैं। प्रदीप जी, राम प्रजापति जी, महेश भाटकर सांताक्रूज से, गणेश पाटिल जी, श्रीधर जी, पंकज मोहर, श्रेया राउत, किशोर नाइक, अनुज अंधेरी से, डॉक्टर अंजू अंधेरी ईस्ट से, विजेंद्र घाटो लकोला से, महेश बोहरा, प्रमोद चिंचोलकर, दीपा पालकर, रजनीकांत पाटिल, अंकित फिरोज सिंह अनपुरिया, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को फिर एक बार प्यारा सा गुड मॉर्निंग आज प्रिया की तरफ से और FM रेनबो की तरफ से। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 MHz पर, जहाँ पर शुरू है कार्यक्रम मस्त मुंबई। वैसे बारिश का आपके यहाँ क्या हाल है, ट्रेन का क्या हाल है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं? ट्रेन शायद थोड़ी बहुत, मतलब कुछ मिनटों के अंतर से, देरी से चल रही है, लेकिन सामान्य है स्थिति हर जगह। सुबह से जो बारिश हो रही है, मेरे ख्याल से मिडनाइट से बारिश हो रही थी, हमारे यहाँ तो हो रही थी सबब में। आपके यहाँ क्या हाल है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सुनते रहिए FM रेनबो, जहाँ पर प्यारे प्यारे गीतों का सिलसिला जारी है।

आप में से कई श्रोता बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत बारिश है, हमारे यहाँ तो बहुत बारिश है, और अभी अभी चंद दिनों पहले की बात है, हम कह रहे थे हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, कब बारिश आएगी? अब बारिश आ गई है, तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि एंजॉय करने के मौके बहुत कम मिलते हैं. जो भी पल आपको मिले खुशी से गुजार दीजिए. तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को विश्व सोशल मीडिया दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. और आपने क्या सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप इस पूरी दुनिया में अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया भर में कई सारे लोग बस इसी आदत के बारे है. खैर, विश्व सोशल मीडिया दिवस की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं 30 जून की यानी आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं पर. 1855 में आज ही के दिन झारखंड की माटी यानी वर्तमान में उसे

साहिबगंज जिला जो है वहां संथाल विद्रोह यानी संथाल हुल की शुरुआत हुई थी। सिद्धू और कान्हू मुर्मू नाम के दो वीर भाइयों ने हजारों आदिवासियों को एकजुट किया था और अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया था। और 1857 की देश की आज़ादी की जो पहली जंग कही जाती है उससे भी पहले इन आदिवासी समुदाय के विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या
3: अरे बिल्कुल इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी ओहो यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा
4: हाँ भाई ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in
6: इस ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 MHz पर और जैसा कि है आज 30 जून और 30 जून का ये कहते हैं ना इस महीने का मेरा आखिरी शो है और हमारा आखिरी दिन है इस महीने का 6 महीने बीत चुके हैं पूरी तरह से अभी ये दिन खत्म हो जाएगा तब तो जैसे कि हमने कहा कि 30 जून 1938 को दुनिया को उसका पहला रक्षक मिला था आप सोचोगे ये कौन सा रक्षक मिला था सोचिए जी हाँ आज ही के दिन एक्शन कॉमिक्स जो था नंबर 1 के पन्नों पर पहली बार अवतरित हुए थे हमारे प्यारे चश्मिश क्लार्क केंट कुछ याद आ रहा है चलिए मैं बोल ही देती हूँ यानी हमारे सुपरमैन नीली ड्रेस रेड कलर की कैप और सीने पर वो बड़ा सा एस लिखा हुआ सुपरमैन वाला याद आया और मुझे पूरा यकीन है कि बचपन में ये जो शक्तिमान देखी हुई पीढ़ी है एक दौर में टीवी का दौर शुरू हुआ था तब तो शक्तिमान जो सीरियल है उसके आने से पहले हम में से कई सारे जो लोग हैं बच्चे उन्होंने पीठ पर मम्मी या अपनी बहन का लाल कलर का ऐसे दुपट्टा बांधा होगा गले पे और बेड से कूद रहे होंगे सोफे से कूद रहे होंगे सीढ़ियों से कूद रहे होंगे गिर पड़े होंगे क्योंकि सबको बनना था उस दौर में सुपरमैन आपकी कोई यादें जुड़ी हैं सुपरमैन से ज़रूर बताइए आज ही का वो दिन था जब वो कॉमिक्स के पन्नों पर छाए गए थे और आज ही के दिन DC कॉमिक्स ने जेरी सीगल और जो शस्टर जो है के इस कैरेक्टर को दुनिया से मिलवाया था और तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन सुपरमैन $1 बिलियन की फ्रेंचाइजी बन जाएगा तो चलिए आज मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट्सएप पर बताइए कि अगर आपको सुपरमैन जैसी जादुई ताकत मिल जाए तो आप उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे ज़रूर बताइए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है हम इंसानों को ऐसे चमत्कार या ताकत कोई जादू हो तो बड़ा मज़ा आता है तो सुपरमैन वाली जो ताकत मिलती तो क्या होता वैसे हम सुपरमैन की जादू को वाकई में अब तक नहीं भूले हैं

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: नौ बजकर 30 मिनट हो चुके हैं और मैंने आपसे इस गीत के उस पार एक सवाल पूछा था कि अगर सुपरमैन की पावर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो अजय साखरे जो है इंदौर से, वो कह रहे हैं कि मुझे सुपरमैन की शक्ति मिल जाए तो मैं यूरोप का चक्कर लगाकर आऊँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और फिरोज सिंगनपुरिया जी ने कहा है कि मैं अगर सुपरमैन की पावर मुझे मिल जाती है तो मैं धीरे धीरे भ्रष्टाचार जो चल रहा है, हो रहा है, उसे पूरी तरह से खत्म करने की वो कोशिश करेंगे, वो कर देंगे पूरी तरह से कोशिश। वाकई में बहुत बहुत, मतलब ये जो हमारी दिली ख्वाहिशें होती है ना कि अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसी कोई पावर मिल जाए, ढेर सारा पैसा मिल जाए, एक पावर जो होती है, पैसा जो होता है, इससे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये वाकई में इंसान के अंदर बहुत सी चीज़ें होती जो वो करना चाहता है। और महेश बोहरा जो है अजमेर राजस्थान से लिखते हैं कि मानवता और इंसानियत के नाते वो ज़रूरतमंदों की जो मदद है ना वो करना चाहेंगे। और सच में ज़रूरतमंदों की ऐसे में अगर हम मदद करते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए, आप सभी से भी जवाबों की उम्मीद है कि सुपरमैन की पावर अगर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे। वैसे पता है आज का दिन हम सब के लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि आज है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। बहुत से लोग सोचेंगे कि एस्ट्रॉयड आखिर होते क्या है, ये कौन है भाई, इनका क्या दिन, हम क्यों मतलब यहाँ पे मना रहे हैं। तो एकदम इजी वर्ड में, आसान शब्दों में बताओ तो ये जो अंतरिक्ष में उड़ती हुई चट्टाने होती हैं, अब आप सोचोगे अंतरिक्ष में तो ये जो चट्टाने उड़ती हैं इसमें हम पृथ्वीवासी क्या करें। तो समझ लीजिए ये हमारे सौर मंडल के अनचाहे मेहमान हैं, वो यहाँ वहाँ इसके उसके घर में झांकने की कोशिश करते रहते हैं। और ये हमारे पृथ्वी के निर्माण के समय के बचे कुचे टुकड़े हैं जो मार्स हो यानी कि मंगल ग्रह या बृहस्पति जुपिटर के बीच की जो कक्षाएँ हैं ना उनमें घूमते रहते हैं। मतलब इमेजिन कीजिए, सोचिए आप ही सोचिए। और इनका आकार किसी छोटे से कंकड़ से लेकर कई मील चौड़ा तक हो सकता है। यस, और इसी इतनी बड़ी बड़ी ये जो चट्टाने हैं अंतरिक्ष में घूम रही है। तो क्या अब ये भी सवाल उठता है, ये चट्टाने अगर हम पे गिर पड़ी तो पृथ्वी को धोखा है, पृथ्वी खतरे में हो सकती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक है नासा के, इसरो के, ये जो है ना इन्होंने एक तरह का एक ऐसा शानदार सिस्टम बनाया है जिसे प्लैनेटरी डिफेंस कहते हैं, यानी प्लैनेट की सुरक्षा करते हैं वो उस सिस्टम के मदद से। और दुनिया भर के वैज्ञानिक स्पेस में उड़ने वाली इन चट्टानों पर कड़ी नज़र रखते

हैं, जी हाँ, दिन रात कुछ ऐसी दूरबीनें हैं मशीन से, जिसके जरिए उनको पता चलता है कि ये किस घर में झांक के गया, ये मंगल के घर में झांक रहा है, या ये बुध के घर में झांकने गया है, या ये कहीं और गया है, या दूर कहीं प्लूटो के पास तो नहीं चला गया। तो ये सारा उनको पता होता है। और तो हमारे जो प्यारे मुंबईकर्स हैं, आज रात को जरा खिड़की से बाहर आसमान की तरफ भी देख लेना, क्योंकि सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल मत करते रहना, क्या पता कोई एस्ट्रॉइड यहाँ वहाँ घूमता नजर आए और आप उसको हाय हेलो कैसे हो ये कहे।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours।
1: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। 9:47 हो चुके हैं और मस्त मुंबई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आरजे प्रिया के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, और आज स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत और देश के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी का निधन आज के दिन 1914 को हुआ था। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले

एशियाई थे, और उनकी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब ने अंग्रेजी शासन की आर्थिक लूट का पर्दाफाश किया था। बिल्कुल, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस जादुई संगीतकार को जिन्होंने अपनी धुनों से सिल्वर स्क्रीन पर सदाबहार रंग भर दिए। हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बड़े भाई कल्याण जी वीर जी शाह जी की। उनकी आज जयंती है। कल्याण जी के अंदर संगीत को लेकर इतना प्यार था और इतना अपनापन था, एक दीवानगी थी, और ये दीवानगी उन्हें उस दौर में सीधे मुंबई खींच लाई। और यहाँ शुरुआती दौर में वैसे उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, और उसके बाद अपने छोटे भाई आनंद जी को भी वो मुंबई ले आए, और फिर बनी वो ऐतिहासिक जोड़ी कल्याण जी आनंद जी। और इस जोड़ी ने करीब 250 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया, और उनकी बनाई हुई जो धुनें हैं वो आज भी हमारे दिल में ताज़ा हैं और आगे भी रहेगी।

वाकई में जब भी ये गीत हम सुनते हैं ना, तो एक अलग तरह की एक मजेदार एनर्जी अपने आप में छा जाती है और मन बस झूमने को करता है, नाचने को करता है। और आप सभी को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आपको बताती चलूँ, ठीक 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत इस घंटे के प्रमुख समाचार आप सुनेंगे। और आप सभी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। रघुनाथ खानूनकर कोल्हापुर से अभी हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पे भी बारिश हो रही है। और महेश भाटकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, प्रदीप जी है, महेश भोरा जी है, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और दीपाली शिरोडकर जी हैं, किशोर नाइक है और अजय साखरे जी हैं। और आप सभी को प्रोग्राम कैसे लग रहा है हमें बताइए। और हाँ, सुपरमैन की पावर अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे और क्या करना चाहोगे, ये सवाल जारी रहेगा। जी हाँ, नमस्ते भारत कार्यक्रम जब आप सुनेंगे 10:02 से तब भी ये सवाल रहेगा और आप इसके जवाब हम तक ज़रूर पहुँचाइए। और हमारा व्हाट्सअप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो नोट कर लीजिए, 8657661071। चलिए एक प्यारा सा मज़ेदार दिल को छू लेने वाला गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और ठीक 10 बजे सुनेंगे आप हिंदी के प्रमुख समाचार।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत इस घंटे के प्रमुख समाचारों पर। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में अगले वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने कल विधान परिषद में की। उन्होंने टीएटी पेपर लीक मामले पर सदन में वक्तव्य दिया। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 163 अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप फुटबॉल मैच में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अब ब्राजील का सामना अंतिम 16 में आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई है। तो ये थे आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत इस घंटे के प्रमुख समाचार। आकाशवाणी एफएम रेनबो। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:03 हो चुके हैं और चलिए अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

आप सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, मेरी यानी कि आरजे प्रिया के साथ। और आज है 30 जून, यानी इंटरनेशनल सोशल मीडिया डे। जी हाँ, हम सभी के दिल के करीब फिलहाल इन दिनों जो है वो सोशल मीडिया है, और आज उसका दिन मनाया जा रहा है। और सोशल मीडिया के बिना हमारी आँख नहीं खुलती और रात को नींद नहीं आती। और आज का नमस्ते भारत कार्यक्रम जो है इसी लाइक शेयर और कमेंट वाली दुनिया के नाम पर है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज बातें भी होगी, यादें भी होगी और थोड़ी ज्ञान का भी लेन देन होगा। तब तक सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। और आज हम मना रहे हैं सोशल मीडिया डे। और जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया के बगैर ना तो हमारी सुबह होती है और ना ही रात, तो ऐसे में क्यों ना हम उन पुरानी यादों को ताज़ा करें। दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए और सोचिए कि सोशल मीडिया से पहले का जीवन कैसा था। तब स्टेटस सिर्फ समाज में होता था और सोशल मीडिया पर नहीं। तब स्टोरी नानी दादी सुनाती थी, ना कि 24 घंटे में गायब होने वाली स्टोरी नहीं होती थी वो। और सबसे बड़ी बात, तब खाना खाने के लिए होता था, ना कि उसकी फोटो खींचकर लोगों को दिखाने के लिए। याद आया वो सब कुछ? अगर आपको याद आ रहा है तो जरूर बताइए और सुनते रहिए FM Rainbow।

10:23 हो चुके हैं और सोशल मीडिया दिवस आज हम मना रहे हैं. और किसी ने क्या खूब कहा है कि वो चिट्ठियों का दौर, वो डाकिए का इंतज़ार, अब तो बस एक ब्लू टिक तय करता है हम सबके बीच का प्यार. तब बातें होती थी शाम को चाय की चुस्की के साथ, अब लोग पास बैठकर भी करते हैं चैट पर बात. आए क्या सही कहा है, दिल जो तीर है ना दिल पर लगा है, पूरी तरह से निशाने पे लगा है. कभी कभी होता है घर में कम लोग होते हैं, 2-3-4 लोग होते हैं और चारों लोग तीनों लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता. और अगर किसी कारणवश मोबाइल सोशल मीडिया से दूर है तो मतलब हड़बड़ा जाते हैं. कभी गौर कीजिए किसी के पास कंटिन्यू मोबाइल होता है वो सोशल मीडिया पे, और 5-10 मिनट के लिए उससे उसका मोबाइल कहीं छिपा दीजिए.

सिस्टम नहीं है उसके पास या बैटरी खत्म हो गई, उसकी हालत देखिए आप क्या होती है। तो ये तो पुराने दौर की बात हो गई कि सोशल मीडिया के पहले की ज़िंदगी को आप सभी मिस कर रहे हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, हम सभी करते, लेकिन हम सभी शायद भूल भी गए हैं कि सोशल मीडिया के पहले भी ज़िंदगी हुआ करती थी। हाँ, हुआ करती थी। याद आ रहा है, याद कीजिए, किसी दोस्त को उसके बर्थडे के दिन, किसी रिश्तेदार को किसी त्यौहार के दिन हम घर पर जाकर मिले हैं। अभी ऐसा होता है, हाँ अच्छा ग्रुप पे आया है, इसका बर्थडे, ओके ओके हैप्पी बर्थडे। अच्छा कोई चल बसा, ओके ओके चलो हाथ जोड़ दिए। अच्छा ये कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना है, लिख दिया। कितने मतलब चंद पलों की ये जो हमारी फीलिंग्स है ना, बदलती रहती हैं। मतलब कई बार तो मुझे बुरा लगता है, एक बार एक ग्रुप पे थी मैं और किसी की घर का बेहद करीबी गुजर गया था और सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे ग्रुप पे, रिप लिख रहे थे, हाथ जोड़े रहे थे, फूल दे रहे थे और श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि, और अचानक उसमें से किसी को याद आया कि आज ग्रुप में ही किसी एक का बर्थडे भी है। तुरंत शुरू हो गया हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मतलब अजीब लगा कि ये कितने चंद पलों में सब कुछ कैसे बदल जाता है ना। सोशल मीडिया का शायद जादू ये है, असर ये है, या हम इतने इतने फास्ट हो गए हैं दिमागी तौर पर कि हम किसी फीलिंग्स को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, सोशल मीडिया की इसी तरह की बातें तो होती रहेंगी। एक प्यारा सा गीत, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बातों और गीतों का सिलसिला जारी।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से हम कभी नहीं जुदा होंगे, भले कभी खुशी महसूस हो, कभी गम महसूस हो। सोशल मीडिया डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में, और सोशल मीडिया के पहले की लाइफ को हम याद कर रहे हैं, तो धुंधली सी यादें जो हैं वो हमें आ रही हैं याद, कि कभी मिलकर बैठा करते थे, गप्पे लड़ाते थे, घर घर जाते थे एक दूसरे के और इंजॉय करते थे, घंटों बातें होती थी, बहुत सी चीज़ें होती थी। लेकिन जी हाँ, हर बात के बाद तो लेकिन आता ही है, सोशल मीडिया के पहले की लाइफ के बात हम हो रही है, अभी हम कर ही रहे हैं। वो जो दिन थे सुहाने और सुकून भरे, हाय सबको याद तो आते हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया को कोसना जो है ना, ठीक नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया आने से ऐसा नहीं है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है, इसके कई सारे कमाल के फ़ायदे भी हुए हैं, और इन फ़ायदों के बारे में अगर हम सोचें तो ये उन लोगों से पूछिए पुराने ज़माने में जो सालों तक अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, एक चिट्ठी अगर आज उन्होंने पोस्ट की है तो पता नहीं कब मिलेगी, शक्ल नहीं नज़र आती थी, बेटी एक बार ब्याह दी जाती थी तो महीनों सालों रिश्तेदारों को मिल नहीं पाती थी। और शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी ने ठीक ही लिखा है, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया नहीं होता तो हम किसी को मैसेज नहीं कर सकते थे, हम उन किसी के करीब नहीं आ सकते थे, बहुत दिनों तक मिलना नहीं होता था सोशल मीडिया के ज़रिए। एक बात तो हो गई है कि हम जब चाहे हम मिल सकते हैं। और प्रकाश इंद्र जी ने लिखा है कि आकाशवाणी पर हर एक श्रोताओं का कॉल लेना नामुमकिन था, अगर सोशल मीडिया नहीं होता हम मैसेजेस नहीं कर पाते, हम संदेश नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया के आने से कमाल के फ़ायदे भी हुए हैं, और इसकी मदद से

दुनिया के किसी भी कोने में बैठा टैलेंटेड इंसान चंद मिनटों में स्टार बन सकता है। जी हाँ, और अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो उस वीडियो को हम पोस्ट करते हैं तो वायरल भी हो सकते हैं, अगर वो वीडियो वाकई में उतना अच्छा है। सोशल मीडिया का जादू वैसे छोटों से लेकर बड़ों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, और इसकी मदद से हम सात समंदर पार बैठे दोस्त रिश्तेदारों से लाइव वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। और आप ताबे मदद जो है, आप कोई प्रॉब्लम में है, किसी को ब्लड चाहिए, किसी तरह की मदद चाहिए, तो लाखों लोग एक साथ मदद के लिए आगे भी आते हैं। ये भी फ़ायदे हैं। और छोटे छोटे जो होम मेकर्स हैं, होम में बिजनेसेस हैं, आज वो सोशल मीडिया के दम पर वाकई में अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। कई महिलाओं ने अपने छोटे मोटे बिजनेसेस शुरू किए हैं और यंगस्टर्स भी कई सारे बिजनेसेस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो कहते हैं ना कि दूरी चाहे कितनी भी हो, पल में मिटा देता है, ये सोशल मीडिया है जनाब, अनजानों को भी मिला देता है। लेकिन रुकिए ज़रा, कहते हैं ना कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई भी होती है। सोशल मीडिया के इस सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, जानेंगे इस गीत के उस पार।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का, 10:45 हो चुके हैं और 107.1 आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप आरजे प्रिया के साथ। और सोशल मीडिया की बात हो रही है, सोशल मीडिया के पहले की ज़िंदगी और अब सोशल मीडिया के फ़ायदे, हम इन सब पे बातें कर रहे हैं, आपकी भी राय विचार हम पढ़ रहे हैं। तो फ़ायदे तो हमने देख लिए कि हम दुनिया करीब आ चुकी है और हर तरह की मदद मिलती है, कई सारे बिजनेसेस शुरू हो चुके हैं, आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस जाल की जिसमें हम सब फंसे हैं, या यूं कहिए हम में से कई सारे लोग फंसे हैं। बिल्कुल ये जाल नहीं है तो और क्या है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन। देखते हैं कि रात को जो हमने फोटो डाली थी उस पर कितने लाइक्स आए हैं, कितने पहचान वालों के घर में क्या क्या हो रहा है, किसने क्या खाया है, क्या पहना है। और इसी चक्कर में सोशल मीडिया के नुकसान अब खुलकर सामने आ रहे हैं, इस पर कई सारी बातें भी हो रही है। सोचिए हम 15 सेकेंड की रील देखने बैठते हैं और कब घंटों निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और इसे हम टाइम की बर्बादी नहीं कहें तो फिर क्या कहें। लोग फिल्टर का सहारा लेकर सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं और असल जिंदगी में उनमें से कई लोग डिप्रेशन जो है उससे जूझ रहे हैं। किसी ने कुछ भी अफवाह उड़ा दी और लोग बिना सोचे समझे उसे शेयर करने लगते हैं और उन अफवाहों पर विश्वास भी रखते हैं। दिखावे की इस बस्ती में हर कोई लाचार है, लाइक की गिनती से तय होता है अब किसका कितना मान है। चेहरे पर मुस्कान झूठी, दिल में भरा गुबार है, ये सोशल मीडिया का दौर है साहिब, यहाँ हर शख्स बीमार है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। ये तो हो गए मतलब सोशल मीडिया के ज़्यादा और हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ये जो होड़ मची हुई है हम सब में, इसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो इस तरह से हैं। अगर आप सोशल मीडिया दिवस को शानदार तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना भी बेहद ज़रूरी है। और देखिए आने वाले भविष्य में सोशल मीडिया और बदलने वाला है, AI मेटावर्स का ज़माना है ये, और टेक्नोलॉजी और आगे जाएगी, इसलिए हमें आज ही संभलना होगा सोशल मीडिया का एक जो कहते हैं ना इस्तेमाल, बड़ी ही समझदारी से करना होगा। तो दिन में कम से कम 2 घंटे बिना फ़ोन के हम बिता सकते हैं, परिवार के साथ बैठ सकते हैं, और फ़ोन में ऐप टाइमर भी होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, और रील देखने की भी एक सीमा आप तय कर सकते हैं। कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में आ सकती हैं कि आप सोशल मीडिया से दूरी कैसे बनाए रखें, अगर ज़रूरत ना हो तो ये आप कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए, और सुनते रहिए FM रेनबो

0: अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। आज दुनिया भर में सोशल मीडिया डे मनाया जा रहा है, तो बस आज के दिन के लिए नहीं, जो भी टिप्स हमने आपके साथ शेयर की हैं उनको आप एक बार अपने ऊपर आजमा कर देखिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने से सब कुछ होता है। तो चलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देती हूँ और काफ़ी गुड न्यूज़ है। आपने धुरंधर फिल्म तो देखी होगी, जिसमें वो कई एक गाना है काफ़ी फेमस हुआ था, उसका आइटम सॉन्ग उसे कोरियोग्राफ किया था विजय गांगुली ने। वो कौन सा आइटम सॉन्ग है वो तो आप सुनेंगे ही, साथ ही कई सारे प्यारे प्यारे और मस्ती भरे गीतों को कोरियोग्राफ करने वाली कोरियोग्राफर विजय गांगुली आज आपसे मिलने आ रहे हैं। जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर वो आ रहे हैं और उनसे बातें करेगी RJ रोशनी। तो सुनना बिल्कुल मत भूलिए और मुझे यानी कि RJ प्रिया को दीजिए इजाज़त। आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा हमें ज़रूर सोशल मीडिया के जरिए बताइए। सुनते रहिए 107.1 पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं और अब नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के तहत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे पहले 28 जून को भारत ने शक्तिशाली भूकंपों से प्रभावित वेनेजुएला के आपात मानवीय सहायता सामग्री भी भेजी थी। और समाचारों के अंत में, अमेरिका के फुलर्टन में किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यही पर समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो सेवा पर। ग्यारह बजे के समाचार पूरे हो गए हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। रोशनी आ गई है, क्या बात है। जून का आखिरी दिन जो है हम साथ एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। बहुत अच्छा जो है मौसम हमारे आसपास बना हुआ है। आपके यहाँ पर भी मौसम आपको अच्छा लग रहा है या फिर कुछ शिकायत है तो ज़रूर अपनी दोस्त के साथ आप अपनी दिल की बात ज़रूर साझा कर सकते हो। तो ये बातें भी चलती रहेंगी। उसी के साथ अब 11 और 12 के बीच ब्रेक फ्री कार्यक्रम में हम कुछ महिलाओं के बारे में बातें करने वाले हैं। ऐसी महिला जो अपने आप को सेकंड चांस डिग्री दे रही हैं, यानी क्या जानना है तो आपको यहीं पर बने रहना है। और उसी के साथ आखिरी दिन है, बता दिया है, तो साथ मिलकर हमें इस महीने को अलविदा कहना है। तो देखो, आते ही अलविदा की बातें हो गई और तो वो भी कर ही लेंगे, क्यों ना। वक्त मिला है तो उसके लिए भी थोड़ा सा जो एक खास समय हम निकालेंगे। और हमारे साथ एक बहुत ही खास हस्ती भी जुड़ने वाली है। उनके साथ बातें भी होंगी, उनके डांस पेपी नंबर्स भी हम सुनेंगे। तो बहुत कुछ है आज 11 और 12 के बीच। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी अभी मिले हैं एक दूसरे को, थोड़ा सा वक्त दे देते हैं और म्यूजिक सुनते हैं। पहला गाना मैं हूं ना फिल्म का टाइटल ट्रैक।

इंतजार तो चल रहा है, लेकिन उसके बीच हमें अपना काम भी करना है और जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और कई बार इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनने मिलती है तो हमें भी और जोश आ जाता है। जैसे वडोदरा की एक दादी है, उनका बचपन से ही सपना था कि वो डॉक्टर बने। कम उम्र में शादी हो गई, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन आखिरकार 67 साल की उम्र में उन्होंने PhD पूरी कर अपने नाम के आगे डॉक्टर जो है वो जोड़ ही दिया। मध्य प्रदेश की एक महिला, उनके भी परिवार में पैसों के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, शादी भी जल्दी हो गई, लेकिन सपना जो है पूरा करने की ठानी। और जब बेटा 12वीं की परीक्षा दे रहा था

बेटे के साथ साथ वो भी परीक्षा में बैठी, अच्छे नंबर से पास भी हुई और उनकी भी अब तैयारी शुरू हो गई है कि आगे अब कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो 40s, 50s, 60s में हैं, जो अपने आप को सेकंड चांस डिग्रीज दिला रही है।

मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो। जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई के संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
4: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना सुनिधि चौहान की आवाज़ साथ दिया है। नताशा तेजुरानी नीरजा फिल्म का ये गाना है और ऐसी ही कई सारी माओं की महिलाओं की बातें हम कर रहे हैं। ऐसा हुआ था कि वक्त के चलते कईयों के साथ पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी थी, तभी के जो हालात थे, तभी का तो जो माहौल था, उस वजह से ऐसे हुआ था, या फिर

कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने पढ़ाई भी पूरी की, नौकरी भी पूरी की, उसके बाद एक नए विषय में फिर एक बार स्टूडेंट मोड जो है अपना एक्टिवेट कर लिया, और जब घोंसले के सारे पंछी उड़ना सीख गए तब माँ ने एक नई उड़ान ली।

आप सभी का फिर एक बार स्वागत है न्यूज ऑन एयर ऐप और साथ ही 107.1 मेगाहर्ट्ज पर रोशनी के साथ कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री, जहां पर सेकंड चांस डिग्रीज के बारे में बातें कर रहे हैं और ये भी पता चला है कि डोंबिवली में रहने वाली ज्योति जोशी जो है वो एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर रही है। 55 की उम्र में कोरोना के दौरान उन्होंने जॉब छोड़ दिया, उसी दौरान बेटी भी आगे की पढ़ाई के लिए US चली गई। हर तरफ से इशारा मिल रहा था कि ये सही वक्त है कि वो IT सीखने की चाह को पूरा करे। पास ही के कॉलेज में BSc IT के लिए एडमिशन ले लिया। किसी और को कुछ कहने के पहले ही बार बार खुद को याद दिलाया कि घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए ये आगे की पढ़ाई करनी है। फैमिली सपोर्ट भी मिला, 3 सालों में कई सारे

मुश्किलें भी आई, उसके बावजूद हर सेमेस्टर में वो अव्वल आए। 92% के साथ उन्होंने बीएससी आईटी अब पूरी कर ली है और साथ ही एमएससी के लिए और वर्क फ्रॉम होम के लिए वो पूरी पूरी तरह तैयार है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने आप को सेकंड चांस ही नहीं, सेकंड चांस डिग्रीज दे रही हैं। अगर आपको भी इतनी ही इंस्पायरिंग कहानियां पता है तो फ़ोन कॉल करिए, मैसेज करके अपनी बातें मुझ तक पहुँचा सकते हो। तब तक मैं भी ऐसी और भी कई सारी महिलाओं की कहानी ढूंढ लाती हूँ, क्योंकि आपके साथ जो शेयर करना है।

पाठशाला है ये, पुरानी पाठशाला।

0: मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो, जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।
1: 35 साल बाद पेपर लिखते हुए घबराहट तो बहुत हो रही थी, फिर भी एमए के पहले साल में डिस्टिंक्शन हासिल कर ही लिया। ये है प्रभादेवी में रहने वाली हेमा मेहता। अभी जून में यानी इसी महीने एमए इन गुजराती लिटरेचर के दूसरे साल के लेक्चर्स उनके शुरू हो गए हैं। दो साल पहले हालात, तो जो सेहत के जिस तरह के हालात थे और सेहत का ख्याल रखने के लिए और साथ ही पढ़ाई का बहुत शौक है, इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना फिर एक बार एक नया मास्टर जो है उसकी शुरुआत की जाए। अब ऐसा हो रहा है कि दोनों बेटियों ने अपने वर्क फ्रॉम होम का शेड्यूल माँ के कॉलेज के लेक्चर्स के हिसाब से पूरी तरह एडजस्ट कर लिया। तो घर वाले पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, साथ ही कॉलेज के प्रोफेसर जो है उनका भी उतना ही सपोर्ट है। अब इनके क्लासरूम में ज़्यादातर जो क्लासमेट्स हैं वो 40, 50, 50 की ही महिलाएं हैं, यानी ये एक दूसरे के हालात बहुत अच्छे से समझ लेती है, इसीलिए जब कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ये सभी तैयार रहती हैं। तो अभी तक हमने जितनी सारी महिलाओं की कहानी सुनी है तो उससे बार बार हमें यही याद दिलाया जा रहा है कि अगर हम मुश्किलों के बारे में सोचेंगे तो आसपास वही दिखेंगे, और थोड़ी भी अगर संभावना खोजेंगे तो रास्ता अपने आप जो है

मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो। जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई के संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप

0: आदिता अस्मिता एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: रिस्पांस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

महाराष्ट्र के पनगंगा गांव के एक स्कूल से नर्सरी राइम्स गाने की आवाजें आ रही थी। ABCD से क ख ग घ सारी विद्यार्थी एक साथ सीख रहे थे। जब झांक कर देखा तो छोटे छोटे बच्चे नहीं बल्कि गुलाबी साड़ी पहने, साथ में बैग और किताबें लिए 40, 50 यहाँ तक 90 साल की महिलाएं जो वो पढ़ रही थी। ये है अज्जीवाई जी शाला। 2016 में इस स्कूल की शुरुआत हुई, तब पहले बैच में सिर्फ 28 महिलाएं ही थी। हर बैच के साथ आंकड़ा बढ़ता चला गया और अब पिछले 10 सालों में सारे गांव वालों ने और उन सभी महिलाओं ने ये समझ लिया है कि जब स्कूल और कॉलेज पर एक बार जाते हैं तो सिर्फ डिग्री मिली है, शिक्षा, ज्ञान, ये सब कुछ नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास, इज्जत और भरपूर सारी खुशियाँ जो है यही स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई जो है हमें दिलाती है।

घर की माँ, नानी, दादी जब चार दीवारों के अंदर उनका जीवन सीमित था, घर की जिम्मेदारियाँ निभा रही थी, तभी भी हमें उन पर बहुत नाज हुआ है। हमेशा उन्होंने हमें प्रेरणा ही दी है। और अब जब वो सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए फिर एक बार वो घर से बाहर निकल पड़ी है, नए से कुछ सीखना चाह रही है, बनाई हुई पहचान को एक अलग मकाम पर, एक नई कामयाबी पर वो ले जा रही है, तभी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ही हमें रही है। तो फिर एक बार उन सभी प्यारी प्यारी माओं के लिए नानी दादी को सलाम करती है रोशनी। शुक्रिया, हमेशा हर वक्त हर दम जो है आपने हमें इंस्पायर किया है। आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं लेकिन सिखा हमें कुछ रहे हैं, क्या बात है। तो सभी माएँ जो फिलहाल FM रेनबो सुन रही हैं, उन सभी के लिए 10वीं दानिया फिल्म से ये गाना जो है खास उनके लिए डेडिकेट करते हैं।

विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने जानकारी दी कि अमेरिका और भारत के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और केवल 1% बातचीत बाकी है। लगभग 18 महीनों से चल रही वार्ता अब जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए बेहद लाभकारी होगा। कई विश्व नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा था कि 28 जून की रात को किए गए हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए और 163 अन्य घायल हो गए। साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। और समाचारों के अंत में, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद मुंबई के 6 रेस्तरां, होटल, बेकरी और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ये कार्यवाही 26 से 28 जून के बीच राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत की गई। इसी के साथ समाचारों का अंक समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो सेवा पर। म्यूजिक कैफे कार्यक्रम शुरू हो गया है और तय था कि कुछ खास बातचीत इस आज के कार्यक्रम में होंगी, लेकिन बातचीत तो ज़रूर होने वाली है। वक्त थोड़ा सा बदल गया है। 1 और 2 के बीच जो है आज के हमारे खास गेस्ट जो है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डांस नंबर्स जो है उनका मज़ा हम लेंगे और उनकी डांस और कोरियोग्राफी की भी बातें होंगी। तो 1 और 2 के बीच क्या होने वाला है हमें पता है, लेकिन अब फिलहाल हमारे पास सिर्फ अभी से लेकर 12:30 बजे तक का वक्त है। और देखो, जून का आखिरी दिन है, इस आखिरी दिन को, इस महीने को अलविदा कहना है तो किस गाने से आप कहना पसंद करोगे? अगर वक्त मिला तो ज़रूर आपका गाना जो है आज के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी बताओ, जून महीने को अलविदा किस गाने से करोगे? तब तक के लिए सोनू निगम की आवाज़ में सुनते हैं 3 इडियट्स फिल्म से गाना।

0: ये अलविदा कहने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। एफएम रेनबो पर कार्यक्रम चल रहा है, म्यूजिक कैफे रोशनी आपके साथ है, थोड़ा सा ही वक्त है और आपकी बातें और आपकी गानों को भी जरूर वक्त मिलेगा। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद किसका गाना सुनना है जाना है तो बने रहो ओनली ऑन 107.1।
1: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।
2: अब इंतजार करने की जरूरत नहीं।
3: क्यों?
2: क्योंकि अब आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं।
3: कैसे?
2: प्ले स्टोर में जाकर प्रसार भारती का न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए। एफएम रेनबो मुंबई को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 24/7।
4: मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
5: कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए।
6: आई एम माधुरी दीक्षित एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन एफएम रेनबो।
7: हाय आई एम कबीर बेदी एंड यू आर लिसनिंग टू एफएम रेनबो चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो।
8: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीनो मुरैया और आप सुन रहे हैं 107.1 रेनबो एफएम फ्रॉम ऑल इंडिया।

0: वस्तु तथा सेवा कर की सही दर यानी GST रेट से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान अब आपके हाथ में।
1: जी हाँ, मोबाइल ऐप GST रेट फाइंडर
0: जो उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर निशुल्क
1: अभी एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर और बहुत जल्द iOS प्लेटफॉर्म पर।
0: यदि आपकी उलझन है कर की सही दर तो अब हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि अब आपका हम सफर GST रेट फाइंडर।
1: वस्तु तथा सेवाओं की दरों की पूरी सूची ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में।
0: वित्त मंत्रालय का उपयोगी ऐप
1: तो अभी डाउनलोड कीजिए GST रेट फाइंडर। देश प्रगति के पथ पर,
0: सही कर सही दर।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
6: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
5: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
6: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
7: अब देखो 30 जून है, बातें तो बहुत हो रही है और कहते कहते आधा साल जो है 2026 का पूरा हो गया है। वैसे मैं कहीं से नहीं जा रही हूँ, मैं अभी भी आपके साथ ही बनी हूँ, बातें भी हो रही है, गानों का भी मज़ा ले रहे हैं, लेकिन बस मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे पूछ लिया जाए, इस महीने को अलविदा कहना है या फिर कभी आपको किसी को अलविदा कहना है तो किस गाने से आप उन्हें गुड बाय कहना पसंद करेंगे। आदर्श कनौजिया ने बहुत ही मज़ेदार गाना और बहुत सभी का फेवरेट गाना है उसका सुझाव किया है, तो सभी मिलकर वही गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

वाकई क्या कहे कैसे कहे, क्या बात है। जावेद अली की आवाज़, स्वानन किरकिरे के बोल, निशान का संगीत, गाना था ये साली जिंदगी से। अब इस कार्यक्रम का आखिरी गाना सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम रब ने बना दी जोड़ी।

इसी के साथ आज का म्यूजिक कैफे कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। ठीक 12:30 पर हम सुनेंगे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम NCERT उमंग। तो बने रहो 107.1 जो है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।

0: पुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए में लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
0: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
0: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
0: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
0: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
0: जी।
1: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
0: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
0: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
0: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे, जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जला

0: जाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी,
1: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई, खोदेंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम। राजन, अभी बहुत सा काम बचा।

0: है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
1: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
4: क्या क्या क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए, नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
1: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुलाकर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
8: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
8: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का का का।
9: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: やばい。パピー花ピエトジャパン。
1: ガンガンガン。あれ？इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: बहु बहु बहु। अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। बहु बहु। कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँव गाँव गाँव। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव। शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँव गाँव। अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँव
6: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यही आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
7: भाई? मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
7: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
6: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: खाओ, खाओ, खाओ।
6: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे? क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे। खाओ, खाओ।
6: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल? इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
7: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था।
1: ठीक
2: है। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: चलो
3: पिए दूजा पानी।

0: बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी।
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग। अभी हमने सुना स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम उमंग। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो सेवा पर।
3: मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो, जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई के संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, FM रेनबो और FM गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।
2: एक सौ सात दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। और अब कुछ ही पलों में यानी दोपहर के ठीक एक बजे हम सुनेंगे आकाशवाणी के छत्रपति संभाजी नगर से मराठी समाचार। तो बने रहो FM रेनबो पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूँ रोशनी और कार्यक्रम हिट एंड हॉट शुरू हो गया है। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो आजकल हमें बहुत नचा रहे हैं। साल तो नया आ जाता है, एक नई फिल्म आती है, नया गाना आता है और उनके हर एक स्टेप से वो हर बार हमारा दिल जीत ही लेते हैं। अब उन्हें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसा कहना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये कहेंगे उनके हर एक गाने को, हर एक डांस स्टेप को हम बहुत दिल से पसंद करते हैं और वो मुंह जबानी हमें याद है, लेकिन थोड़ा हम उन्हें भी जानना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी जर्नी कैसी रही है वो समझना चाहते हैं। इसलिए आज हमने आकाशवाणी के एफ एम रेनबो की स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुपरहिट कोरियोग्राफर विजय गांगुली को। विजय सर, आपका स्वागत है एफ एम रेनबो पर।
2: थैंक यू रोशनी, थैंक यू।

0: मच फॉर हैविंग मी।
1: क्या बात है, 2025-26 में हर तरफ बस आप ही आप छाए हुए हो और एक नई पहचान सी मिल गई है, शरारत फेम विजय गांगुली बन गए।
0: हाँ हाँ,
1: तो नई पहचान, नया फेम कैसा लग रहा है?
0: बस मजा तो आता ही है, लाइक व्हेन लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है और प्यार मिलता है इतना सारा, तो उसी लिए हम काम कर रहे हैं ताकि हमारा काम लोगों तक पहुंचे, उनको हमारा काम पसंद आए। तो जब वो प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और उससे रिकग्निशन मिलती है कि लोग जानते हैं थोड़ा सा, तो बस काम तो उसी लिए कर रहे हैं हम और उसी लिए हम लगे हुए।
1: क्या बात है, तो कामयाबी मिली है, नाम शोहरत सब मिल रहा है, लेकिन डांसिंग की शुरुआत यानी डांसिंग के साथ आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन कब हुआ था?
0: तो बेसिकली मैंने पहली बार जब डांस किया था वो था माइकल जैक्सन का एक एल्बम निकला था, उसकी कैसेट निकली थी थ्रिलर।
1: ओके।
0: तो मैं जाके पापा को बोला मुझे वो कैसेट चाहिए, तो पापा ने कैसेट दिलाई, घर पे आया मैंने बजाया और फिर वो स्टेप्स कॉपी करना शुरू किया। तब पता भी नहीं था कि डांस, वो बस एक मज़ा आता था डांस करने में, बट सोचा नहीं था कि डांस करेंगे। फिर काफ़ी साल बाद मेरी बहन के वजह से, रूपाली आई थिंक सब उनको जानते हैं, रूपाली के वजह से एक इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया, शामक दावर के इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पर मेरी डांस जर्नी एक्चुअली शुरू हुई। वहाँ पर मुझे पता चला कि मैं अच्छा नाच सकता हूँ। तब तक मैं स्ट्रीट डांस करता था।
1: पर आपको कैसे पता चला कि आप अच्छा नाचते हो, लोगों ने ये बताया या आपको वो भी अपने आप समझने आने लगा?
0: नहीं, ये बड़ा फनी सा इंसिडेंट है कि मैं क्लास में गया और वहाँ पर सब लोग कर रहे थे, एक स्टेप होता है स्टेप टुगेदर, पाँव से करते हैं, तो मैं कर पा रहा था बीट पे, तो मुझे लग रहा था सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। एक दिन शामक आए क्लास में, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको एडवांस ट्रेनिंग के लिए बुलाओ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो मैं बोला अच्छा, मैं अच्छा डांस करता हूँ, मुझे नहीं पता था। वहाँ से शुरुआत हुई।
1: कूल कूल। तो वैसे तो मुझे पता है आपके बहुत सारे हिडन टैलेंट है, आपने बचपन में एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हो, अभी आपने बताया शामक दावर ने भी अभी आपके डांस की तारीफ की है, तो डांसिंग और कोरियोग्राफी ये पहले से तय था या जैसे उस काम ने ही आपको चुन लिया, कैसी रही है की जर्नी डांस के साथ?
0: तो बचपन से हम देख रहे हैं पापा को, पापा बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्म बनाई, नेशनल अवार्ड जीते हैं, और अनिल गांगुली उनका नाम है, और उनके साथ हम सेट पे जाते थे और देखते थे कि पापा सेट कंट्रोल करते थे, लाइक जो पापा बोलते थे सबको करना था। तो पापा बोलते थे आप यहाँ खड़े रहो, तो लोग खड़े होते थे, पापा बोलते थे कैमरा स्टार्ट, तो कैमरा स्टार्ट होता था, पापा बोलते थे एक्शन, तो लोग, मतलब ये तो बड़ा मज़ेदार दुनिया है, यू नो, ये करना है कि ऐसे जगह पर रहो जहाँ पर आप जो बोलो वो लोग करें। पर ये बस बचपन में एक थॉट था, बड़े होते होते वो पता नहीं था कि कहाँ होगा। फिर मैं डांस में चला गया, डांस में आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ लाइव शोज, और फिल्में बहुत कम करता था, सेट पे बहुत कम जाता था, बट वो एक क्रेविंग होती थी कि यू नो वो सेट पे जाना है, फिल्म करना है। एंड आई थिंक वो जो दिल से एक होता है ना कि आपको जो रियली करना होता है और एक पैशन होता है कि ये करना है, वो आपको ढूंढ लेता है। आई थिंक वही हुआ है मेरे साथ।
1: तो लेकिन पहला काम कैसे मिला था?
0: तो जब मैंने आफ्टर 13 इयर्स, 13 साल बाद मैंने सोचा कि अब डांस बहुत हो गया, अब मैं जाता हूँ कुछ और करता हूँ, कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ में, और मैंने जाके फिर डायरेक्शन में थोड़ा सा ट्राई किया। तो काफ़ी सारी छोटी मोटी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला, पर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा था। तब मुझे अनुराग बासु ने फ़ोन किया, मैंने उनको अप्रोच किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ जग्गा जासूस, म्यूजिकल है, तो उसमें मुझे ना रोज़ कोई लगेगा जिसको डांस और कोरियोग्राफी की नॉलेज है, तो आप आ जाओ। तो मैंने वहाँ पर उनको एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया, और वहाँ से आई रियलाइज दैट फिल्म्स एंड दैट होल वर्ल्ड इज़ सो ब्यूटिफुल। लाइक आप जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में एक सीड आ रहा है, आप देख रहे हो अपने दिमाग में, उसको आप एक्चुअली शूट कर रहे हो और फिर एडिट करके लाइव करके आप लोगों तक पहुँचा रहे हो, और लोग भी वो फील कर रहे हैं जो आप लोगों को फील कराना चाहते हो। सो इट वॉज रिमार्केबल, आई सेड दिस इज इट, एंड दैट्स हाउ द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड इन फिल्म्स।
1: तो आपके साथ भी गलती से मिस्टेक ही हो गया।
0: बिल्कुल। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, और ये गाना कर रहे थे हम, और एक दिन दादा ने कहा कि ये गाना है, चलो कुछ करते हैं, कॉल 30 बॉयज और हम कुछ तो जैम करते हैं, और हमने किया और वो गाना बन गया।
1: चलेगा, तो वो गाना हम सुन लेते हैं। विजय गांगुली की कहानी के बारे में भी और जानना है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग गाने और उसके पीछे की खास कहानियाँ जो है वो भी आप हमें जाननी है, तो आप भी कहीं मत जाओ, सुनते रहो 107.1 FM रेनबो।

0: एक ऐसे कोरियोग्राफर, अगर उनके गाने हम ध्यान से देखें तो समझ आता है फिल्म के क्रू मेंबर्स हो, कैमरामैन हो, डायरेक्टर, सभी उस गाने का हिस्सा होते हैं। और अब ऑफ कैमरा उन्होंने वही एक सीक्रेट मुझे बताया है, विजय गांगुली गलती से मिस्टेक जग्गा जासूस गाने के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, और बहुत सारे लोगों का कहना है आप उसी लिए जाने जाते हो, ये आपकी USP है।
1: तो ये गाने में तो बेसिकली दादा अनुराग बासु, वो उनको हमको डालना था कहीं ना कहीं, तो वो भी बड़े अच्छे स्पॉट है, तो वो भी बहुत मस्ती करते हैं। तो वो एक लाइन है कि छाती के बाल दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना, ऐसे कोई एक लाइन है, और उसमें दादा है, और दादा के उनका शर्ट थोड़ा सा फाड़ना था, तो उन्होंने बोला कि इतना ही फाड़ना। और शॉट के पहले रणबीर ने मेरे असिस्टेंट अभिषेक और मुझे बोला कि पूरा फाड़ देंगे, एंड दादा ने बोला तुम लोग जो भी कर रहे हो संभाल लेना, पूरा मत फाड़ना, और उन्होंने पूरा फाड़ दिया। तो जब हमने देखा स्क्रीन पे तो दादा ने बोला हाँ ये तो मैं काट दूंगा फिल्म से, बट वो इतने अच्छे स्पॉट है ना, इवेंचुअली ही ओनली केप्ट दैट शॉट एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल शॉट यू सी इन द सॉन्ग।
0: ग्रेट ग्रेट। और जैसे आपने देखा कि ये सारी तो मजेदार बातें होती हैं, लेकिन हम सबको पता है विजय गांगुली वो है जिनके हर फिल्म में पेपी ट्रैक्स होता है, डांस नंबर्स होते हैं, तब वो विजय गांगुली का गाना है। तो वाकई सारे ऐसे फास्ट ट्रैक नंबर्स ही आपने किए हैं, या फिर सॉफ्ट सूदिंग रोमांटिक ट्रैक्स हो, या फिर कुछ अलग भी एक काम होता है कोरियोग्राफर का फिल्म में?
1: जैसे लोग सोचते हैं कि कोरियोग्राफर का काम होता है कि बस वो हुक स्टेप और डांस करना, बट कोरियोग्राफी एक्चुअली ये होता है जो म्यूज़िक पे जब चीज़ें बैठती हैं और म्यूज़िकली चलती हैं वो कोरियोग्राफी होती है। जैसे सैयारा एक फिल्म आई थी, उसमें पूरी फिल्म में डांस नहीं था बट पूरी फिल्म में कोरियोग्राफी थी। तो उसमें एक गाना था जिसमें वो लड़का चल के आता है, पूरा वन शॉट था, वो चल के आता है, आके वो पियानो बजाता है, लोग देखते हैं, लोग देख के उसके आसपास आते हैं, फिर कैमरा उसके पीछे जाता है, फिर उसका फेस पे आता है कि वो क्या सोच रहा है, फिर गाना गाना शुरू करता है, फिर पीछे जाता है तो लोग और नज़दीक आते हैं। तो इट वॉज़ अ होल डिज़ाइंड कोरियोग्राफ्ड वन शॉट, बट देर वॉज नो डांस, उसमें डांस नहीं था, बट जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि म्यूज़िकली कितने छोटे छोटे न्यूएंसेज है उसमें। तो ऐसे गानों में भी मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब कैमरा डांसेस मोर देन द एक्टर इज आल्सो कोरियोग्राफी।
0: ओह माय गॉड, हाउ लवली यू पुट इट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने कहा कि सिर्फ डांस के लिए ही नहीं, बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं वहाँ पर भी कोरियोग्राफर का काम होता है, लेकिन जब आपको कोई काम या फिर कोई गाना असाइन किया जाता है, हम तो पर्दे पर एक फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, तो उसके बीच क्या क्या होता है हमें वो भी ज़रा जानना है।
1: हाँ बहुत कुछ होता है। तो पहले तो जब गाना मिलता है और अब उस गाने को एवरीवन, अगर डांस नंबर है तो सबके दिमाग में यही होता है कि ये गाना सोशल मीडिया पे पॉपुलर कैसे बनाए,
0: बिकॉज आजकल कितने सालों से शुरू हुआ है
1: ये अभी अब आई थिंक 3-4 साल से शुरू हुआ है, मोस्टली आफ्टर कोविड ज़्यादा हो गया, कोविड के पहले काफ़ी कम था बट अभी बहुत ज़्यादा हो गया है कि सोशल मीडिया पे लोगों को जो भी उसका एक रिक्रिएशन करना है एंड उससे गाना हिट होगा। बट आई बिलीव द अदर वे कि गाना अगर हिट होगा तो लोग जो भी सोशल मीडिया पे वो बनाएंगे, बट दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी गेट कि ये हिट होना चाहिए, और हमको भी अच्छा ही काम करना है और हिट ही करना है, तो हम सब लग पड़ते हैं कि इस गाने के लिए बेस्ट क्या होगा। मेरा बिगेस्ट चैलेंज ये है कि एक आदमी जब गाना देखे वो पूरा 3-3.5 मिनट या 4 मिनट जितने भी गाने के लेंथ है पूरा गाना बैठ के देखे, सिर्फ हुक स्टेप देख के बंद ना कर दे, तो वो स्ट्रगल आज बढ़ गई है कि हाउ टू मेक एवरीवन सिट एंड वॉच द सॉन्ग फॉर द एंटायर लेंथ विदाउट लूजिंग पेशेंस।
0: तो ये स्टेप्स के बारे में बात होगी, लेकिन लोकेशन किस तरह का होगा, डांसर्स कितने होंगे, कौन होंगे, ये भी सब कोरियोग्राफर तय करता है या फिर डायरेक्टर से ब्रीफ किया जाता है और बस आपको स्टेप्स तय करने हैं?
1: तो बेसिकली क्या होता है कि एक पूरा एक कंबाइंड एफर्ट है, इज़ वॉट आई बिलीव, कि एक आदमी से काम हो सकता है बट जो आप मैजिक स्क्रीन पे देखते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने धुरंधर देखी, धुरंधर में गाना बहुत हिट हो गया शरारत, एंड एवरीवन प्रेज द वर्क एंड सेड कि वाओ इट वाज सो गुड, बट आई बिलीव दैट एवरी टेक्नीशियन केम टुगेदर। सो आदित्य सर, आदित्य धार ने मुझे बहुत पहले से वो गाने का, एक गाना भी नहीं बनाता तभी, आइडिया देना शुरू किया कि ऐसा कुछ गाना होगा, दुनिया ऐसी होगी, ऐसा डांस होगा, लोग ऐसे होंगे, इस दुनिया में लोग कैसे बिहेव करेंगे, शादी में कैसे वो लोग खड़े होंगे, सब, मतलब मेरे को एक दुनिया मिल गई थी। तो जब गाना बना और मेरे पास गाना आया, ऑलरेडी हैड द वर्ल्ड इन माई हेड, ऑल हैड टू डू इज जस्ट डू डांस स्टेप्स. तो वॉट यू आर सीइंग, आप जो देख रहे हो और जो इन्जॉय कर रहे लोग, वो सिर्फ डांस स्टेप नहीं है, वो पूरी दुनिया है जो बनी हुई है. वो जो DOP ने शूट किया है जिस तरीके से, वो जैसे कैमरा एक स्टेप में कैमरा राइट लेफ्ट हो रहा था, पीपल अप्रिशिएटेड दैट अलॉट. लोगों ने बोला कि अरे भाई तो कितना अच्छा है, बट वो आइडिया डायरेक्टर से आया और DOP ने एग्जीक्यूट किया और मुझे क्रेडिट मिला, विच इज़ फैंटेस्टिक बिकॉज हम सब ने मिल के ये किया. तो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट. डायरेक्टर जब बहुत क्लियर होता है और हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर बना रहे हैं और उनके विजन को हमको लाइव करना है बेसिकली. और मेरा और एक स्ट्रगल होता है कि ये गाना जो ऐसा ना हो कि कट टू एक सॉन्ग आया और फिर कहानी फिर से शुरू हो गई, तो वो गाना फिल्म का हिस्सा कैसे लगे, ये करने के लिए बहुत मेहनत होती है. स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है, कैरेक्टर्स जानने पड़ते हैं, एंड दैट इज़ द फन प्रोसेस.
0: हाँ, तो एक ऐसा गाना है जहाँ पर सबका एफर्ट था, आपको क्रेडिट मिला, और एक गाना ऐसा भी था जहाँ पर आपने बहुत बहुत बहुत अच्छा काम किया लेकिन क्रेडिट बहुत देर बाद मिला. अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट तारे ज़मीन पर. तो उसका एक बहुत अच्छा किस्सा है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, तो मैं चाहती हूँ कि आकाशवाणी के माध्यम से आप हम सबको वो बात बताएं.
1: सो तारे ज़मीन पर जो फिल्म आई थी, उसमें आई वॉज असिस्टिंग शामक, और शामक के साथ हम गाना कर रहे थे और वो गाना 3 दिन का होने वाला था. और हम पहुँचे सेट पे और पहले दिन आमिर सर ने कहा कि हम आज शूट नहीं करेंगे, आज हम ब्लॉकिंग करेंगे. और उस दिन छुट्टी नहीं हुआ. फिर दूसरे दिन हमने शूट करना शुरू किया, बट आमिर सर वॉज डायरेक्टिंग द फिल्म एंड एवरीथिंग वॉज वेरी डिटेल्ड, तो हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समय लग रहा था और ये हो रहा था. और 3 दिन बाद शामक की डेट्स नहीं थी, क्योंकि शामक को कहीं आउटडोर जाना था और अब वो गाना 3 दिन में ख़त्म नहीं होने वाला था. तो अब क्या करें, तो शामक ने बोला कि विजय विल वेट बैक और वो ही विल मेक श्योर दैट इट हैपेंस. आमिर सर थोड़े से एप्रीहेंसिव थे कि अरे शामक जा रहे तो कैसे होगा. और वो गाना चला 11 दिन, बम बम बोले मस्ती में डोले, वो 11 दिन चला. और मुझे वो 7 दिनों में जो मैं आमिर सर के साथ था, जो मुझे सीखने मिला, जो मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया, या यू नो जो कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग, हम शामक को फ़ोन करके बोलते थे कि हम ये शॉट ले रहे हैं. उसमें एक शॉट है जहाँ पर वो स्कार्फ निकालते हैं, रंग ने बिखराव में वो 4 स्कार्फ निकालते हैं, और बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि वो देख नहीं रहे थे और स्कार्फ कहाँ है हाथ में आना पड़ेगा, तो रीटेक हो रहे थे. आमिर सर ने बोला कि नहीं होगा, तो हमने शामक को फ़ोन किया और बोला कि शामक ये तो वर्क नहीं कर रहा है. तो शामक ने बोला ठीक है फिर चेंज कर लेते हैं. तो हमने फ़ोन रखा, आमिर सर ने बोला फिर क्या करें. तो मैंने आमिर सर को रिक्वेस्ट किया, मैंने प्लीज़ सर एक और बार ट्राई करें क्या, एक बार ट्राई करते हैं. और उन्होंने देखा कि नहीं यार जेन्युइनली ये चाहता है कि ऐसा हो, और उनने वो किया और वो फिल्म में वो शॉट है, आप देखिएगा कितना प्यारा शॉट है.
0: तो शरारत हो, कमरिया हो, तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो गाना तो जरूर पसंद करते हैं, लेकिन बम बम बोले जो है, हर एक बच्चा वन ऑफ द फर्स्ट गाना जिस पर वो डांस करना सीखता है वो यही गाना है. और आज आपकी वजह से हमें पता चला कि ये आपका इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा है, बहुत बड़ा योगदान है. वक्त बता रहा है कि गाने का वक्त हुआ है, तो गाना बहुत प्यारा गाना है, शान और आमिर खान की आवाज़ भी है, सुन लेते हैं. आपको भी ये गाना सुनना है तो बने रहो ओनली ऑन 107.1. मैं हूँ रोशनी और आज हमारे साथ स्टूडियो में है सुपरहिट कोरियोग्राफर विजय गांगुली.

0: मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो, जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।
1: नमस्कार, ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और अब ठीक 1:30 पर हम सुनेंगे मुंबई केंद्र से मराठी समाचार। तो कहीं मत जाओ, सुनते रहो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल।
2: आकाशवाणी मुंबई, कौस्तुभ पटाईत राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, मोसमी पावसाचं आगमन लांबणीवर पडल्यामुळे खरीपाच्या पेरण्यात घट। महाराष्ट्रात विधान परिषद उपसभापतीपदासाठी सचिन अहिर यांचा महायुतीच्या पाठिंब्यावर अर्ज दाखल। 31वे लष्करप्रमुख म्हणून जनरल धीरज सेठ यांनी स्वीकारला पदभार। अमेरिका आणि इराणमध्ये आज कतारची राजधानी दोहा इथं चर्चा होणार असल्याचं वृत्त इराणनं फेटाळलं। आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांसाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघ जाहीर। मान्सूनच्या पावसाचं आगमन लांबणीवर पडल्यामुळे देशात यंदा खरीप पिकाची पेरणी कमी प्रमाणात झाल्याचं कृषी मंत्रालयानं म्हटलं आहे। जून महिन्यात 182 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे। गेल्या वर्षी याच काळात 236 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती, त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पेरणीत 23% घट झाली आहे। भात, तेलबिया, भरडधान्य, कडधान्य, कापूस या सर्व पिकांवर पाऊस उशिरा आल्यामुळे परिणाम झाल्याचं कृषी मंत्रालयानं सांगितलं। भात पेरणीत 25% जास्त घट झाली आहे। कडधान्यात 30%, तेलबिया 50%, तर कापूस लागवडीत 34% घट झाली आहे। दुसरीकडे ऊसाच्या लागवडीत 57% वाढ झाल्याचं कृषी मंत्रालयानं सांगितलं।

0: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है एफएम रेनबो चैनल पर। हिट एंड हॉट कार्यक्रम रोशनी आपके साथ है और मेरे साथ वो है जो पहले अवार्ड फंक्शंस में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करते थे और अब खुद एक अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर बन गए हैं। सर देखो आप ही कितने कामयाब हो, साथ ही आज के बैच के लगभग सभी बेस्ट डांसर्स एक्टर डांसर्स जो है, चाहे सानिया मल्होत्रा हो, ईशान खत्तर है, विकी कौशल, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सभी के साथ आपने काम किया है और कोरियोग्राफर हो या फिर एक आम जनता भी, हर कोई ऋतिक रोशन की डांसिंग की कायल है। तो आपने उनके साथ काम किया है लेकिन कोरियोग्राफी, डांस कोरियोग्राफी नहीं की है, तो ये कैसे और कब हुआ?
1: तो ये एक फिल्म आई थी
2: सुपर थर्टी, तो उसमें मुझे कॉल किया गया था और आई हैड टू कोरियोग्राफ द फिल्म, और उसमें मुझे बोला गया था कि ये फिल्म ऋतिक रोशन हीरो है पर वो कैरेक्टर डांस नहीं करता, और तब मेरा दिल जैसे टूटा था। मतलब इट्स सो क्लोज टू मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स डांस बट आप उनको नचा नहीं पाओगे। तो एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ था, हम शूट कर रहे थे और वो एक गाना था क्वेश्चन मार्क, तो उसमें उनको चल के जाना था और

0: टर्न करना था और बोलना था फर्स्ट लाइन, तो वो चले, उन्होंने वो घूमे, कैमरा लगा हुआ था, और वो रुके 2 सेकंड के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं 1 सेकंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैंने कहा नहीं सर, अच्छा है, करेक्ट है, आप घूम रहे हो, करेक्ट बीट पे घूम के आप बोल रहे हो बच्चों को क्वेश्चन मार्क। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बीट पे घूम रहा हूँ। तो ऐसे, हाँ सर तो बीट पे घूमोगे आप, मतलब बीट है ना। ही सिंग बट आई एम अ नॉन डांसर, सो इफ आई टर्न ऑन द बीट इट विल फील लाइक आई नो रिदम,
1: ग्रेट,
0: बट इन द फिल्म आई एम नॉट दैट, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो ही केम अप विद द आइडिया कि मैं घूमूंगा नहीं, मैं वहीं बच्चे के बाजू में बैठ जाऊंगा। तो देन वी अंडरस्टूड हाउ डीपली इन टू द कैरेक्टर ही इज, एंड बस वहीं से फिर हमारी सुपर 30 की जर्नी शुरू हुई। हमने वो गाना किया, फिर एक गाना किया जोग्राफिया, जहाँ पर एक रोमांटिक ट्रैक था, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी रोमांटिकली, मृणाल भी थी उसमें, तो बहुत मज़ा आया था वो गाना करने और उनके साथ काम करना। मतलब इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, सो मतलब इतना डिटेल में वो सोचते हैं और जैसे करते हैं, बस एक बार उनको डांस करने, मतलब मुझे मिल जाए तो मैं उनको डांस भी करा दूं।
1: जरूर जरूर, अगली बार मुलाकात होगी उसके पहले आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि आपकी जर्नी भी काफी लंबी रही है बैकग्राउंड डांसर से, अब आप खुद अवार्ड्स जो है एक लंबी लाइन उसकी भी लग गई है, लेकिन ऋतिक रोशन या फिर ये कई सारे स्टार्स है, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, इनके साथ भी आपकी एक लंबी जर्नी रही है कभी?
0: तो जब हम डांस करते थे अवार्ड फंक्शंस में, इन सब से हमारी, बिकॉज हम सिखाने जाते थे, जैसे SRK को मैं सिखाने जाता था, और जब मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला जब मैं स्टेज पे गया, तो मैंने लास्ट SRK को सिखाया था 2013 में और मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला 2018 में। तो जब मैं स्टेज पे गया अवार्ड लेने के लिए, उन्होंने मुझे देख के बोला ओ इट्स यू, और उन्होंने मुझे गले लगा के मेरे सर पे हाथ रख के बोला आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने बोला मेरा अवार्ड वापस ले लो, SRK मुझे पहचान गया है, बहुत बड़ी बात है। सो फॉर अस इट वाज, वी डोंट इवन रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड हाउ यू नो वो पहचानते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। तो इवन अभिषेक बच्चन, मतलब उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बन गया था कि फैमिली जैसी हो गई थी हमारी। मिस्टर बच्चन के साथ भी हम लाइक यू नो जब भी उनके साथ काम करता हूँ ऐसा लगता है लाइक यू आर होम, बिकॉज दे ट्रीट यू लाइक फैमिली एंड दे ऑलवेज यू नो अक्नॉलेज यू एंड मेक यू फील स्पेशल।
1: अमेजिंग। और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन सर जो है उनके लिए जो एक लगाव है, रिस्पेक्ट है, उसका कनेक्शन क्या आपके नाम के साथ भी है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल है। वहीं से आया विजय।
1: ग्रेट। तो वही विजय आज हमारे साथ FM रेनबो के स्टूडियो में मौजूद है। बस आखिरी के 16 मिनट हमारे पास है। ऋतिक रोशन और सुपर 30 का जो कनेक्शन है उसे बरकरार रखते हुए सुनते हैं अगला गाना उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

0: गानों का भी मजा ले रहे हैं, साथ ही गानों के पीछे की कहानी जो है और वो गाने जिन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं, वो द वेरी स्माइलिंग वेरी एनर्जेटिक विजय गांगुली हमारे साथ बैठे हैं। तो विजय सर, अब वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास, आखिरी के 11 मिनट है, तो ऐसा करते हैं कि छोटी छोटी बातें ही अभी के लिए कर लेते हैं, यानी मेरे सवाल होंगे और आपके बहुत छोटे से सीधे सरल जवाब होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे मैंने कहा, आप एक्टर भी रह चुके हो, डायरेक्टर भी हो, कोरियोग्राफर भी हो, तो ऐसा कोई हुनर है जो आप में अभी भी है लेकिन हमें उसकी खबर नहीं?
1: ये ऐसा हुनर तो मुझे भी नहीं पता अभी तक,
0: तो इतना हिडन है वो
1: बहुत ज्यादा हिडन है, तो जब मुझे पता चलेगा मैं आपको।
0: ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, तो पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है?
1: अभी तो बहुत लंदन में आगे पीछे हो रहा है, एक फिल्म कर रहा हूँ जो बेस्ड इन बर्मिंघम, तो 3 बार जा चुका हूँ, चौथी बार अब जा रहा हूँ, तो एक लगाव सा हो गया वो जगह से। बट जब वापस आते हैं हमारे देश में, वो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस, एंड यू रियलाइज कि हमारे देश में जो काम का कल्चर है, जैसे लोग काम करते हैं, वो कहीं दुनिया में नहीं करते, क्योंकि हमारे देश में पीपल आर विलिंग एंड रेडी टू वर्क, वो किसी चीज़ को मना नहीं करते। ये खासियत जो हमारे देश की है वो कहीं नहीं है।
0: That's true. और घूमने जाना है कहीं पे, तभी के लिए ट्रैवल करना है, तो वैसी कौन सी जगह है?
1: अल्फा की अभी जो अल्फा फिल्म आ रही है, उसके लिए मैं गया था स्पेन एक गाना करने, तो मैंने लास्ट हॉलीडे वहीं पर लिया था।
0: Okay.
1: बहुत मजा आया था।
0: तो जिंदगी कहीं ना कहीं काम से ही जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, सब कुछ काम से जुड़ा हुआ है, और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट इट इज लाइक दिस।
0: ओके, अभी जो नेक्स्ट सवाल है वो बहुत बहुत सीरियसली उसका जवाब देना है कि किसे कोरियोग्राफ करना सबसे ज्यादा आसान था, श्रद्धा कपूर, तमन्ना भाटिया या रजनी गांगुली, यानी आपकी मम्मी?
1: आसान था,
0: आसान
1: एक्चुअली टू कोरियोग्राफ श्रद्धा और तमन्ना वाज इजियर। मेरी मम्मी को कोरियोग्राफ नहीं कर सकते आप, वो नहीं सुनती है, उनको सब कुछ एकदम करेक्ट करना है। तो हमने एक रील बनाई थी बीच में, और उसमें मम्मी को मैंने बोला था आप डांस करो, उन्होंने बोला मैं ऐसे थोड़ी कर लूंगी, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है, तो वो भी पूरी प्रोफेशनल है।
1: एकदम एकदम।
0: ग्रेट ग्रेट। तो 2025-26 हर तरफ बस आप ही के गाने, आप ही का देखो फिल्मों के बारे में बातें हो रही है, ट्रैवलिंग भी इतनी ज्यादा चल रही है, तो 2026 में अभी तक का काम किस तरह रहा है और आगे कौन सी फिल्मों में गानों में हम आपको आपका काम देख सकते हैं?
1: अभी तो आ रही है, 4 दिन में अल्फा रिलीज हो रही है, उसमें

0: बहुत प्यारे गाने हैं, आप देखना। और मिर्ज़ापुर एक फिल्म आएगी अभी, वो
1: ट्रू
0: भी
1: ट्रू
0: आने वाली है, उसमें भी काफ़ी अच्छे गाने के वो फिल्म में बेसिकली गाने स्टोरी को आगे बढ़ाती है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो भी बहुत मज़ा आएगा। तो इस साल में काफ़ी सारी फिल्में हैं और मज़ेदार फिल्में।
1: लेकिन ऐसे आपके कुछ प्लान्स हैं कि आपको और आगे क्या करना है?
0: बस फिल्म के सेट पे रहना है, वो एज अ कोरियोग्राफर हो, एज अ डायरेक्टर हो, एज अ प्रोड्यूसर हो, एज वॉट एवर, लाइक जो भी काम मिले फिल्म के सेट पे वो करना है। और अभी हमने, मेरे मेरी बहन ने एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की है पापा के नाम पे, अनिल गांगुली प्रोडक्शंस, तो उसको आगे बढ़ाना है और
1: सुपर
0: पापा के नाम को
1: सुपर,
0: बरकरार रखते हुए बस आगे बढ़ते रहना है।
1: यस। कामयाबी की नई नई ऊंचाई है, आप दोनों भाई बहन जो है छू रहे हैं, और दुआ यही है कि वो जो आपके प्रोडक्शन हाउस है वो भी बहुत तरक्की पाए।
0: थैंक यू।
1: यस, अभी इतना वक्त लिया है, इतनी सारी बातें की है, जाते जाते आकाशवाणी और एफएम रेनबो के लिसनर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इट्स अ ऑनर टू बी हियर, इट्स अ प्रिविलेज, बिकॉज ये सबसे ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन है और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये देश में सब ये रेडियो स्टेशन सुनते हैं। तो टू बी ऑन दिस रेडियो स्टेशन, फर्स्टली थैंक यू, एंड सेकेंडली प्लीज़ सुनते रहिए और रेडियो को अलाइव रखिए, क्योंकि
1: थैंक
0: वो
1: यू सो
0: एक
1: मच।
0: ऐसी ऐसी रियली रेडियो इज़ समथिंग दैट हैज़ टू कैरी ऑन, एंड हमारे आने वाली अगली 10 पीढ़ियों को ये पता रहे कि रेडियो कितना इम्पोर्टेंट और कितना ब्यूटीफुल है।
1: थैंक यू सो मच। मैंने आपकी तरफ से संदेश पूछा था, लेकिन आपने हमारी तरफ से ही बहुत प्यारी बात कही है। विजय सर, आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बावजूद 2-4 दिन मिले उसके बीच आप वक्त निकाल कर यहाँ आए हो, हमसे बातें की, इतनी कुछ बातें आपसे जानने मिली। दिल तो कर रहा है कि बहुत कुछ जानना है, बहुत वक्त बिताना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है कि सही वक्त पर उस बातों को तभी के लिए पूरा करें तो बेहतर होता है। तो आज के लिए आज की बातें यहीं पर पूरी करते हैं, और एक बहुत आपका फन ट्रैक है, बधाई हो फिल्म से, तो उस गाने के साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम है, बातचीत है, उसे पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू एफएम
0: थैंक यू
1: रेनबो।
0: सो मच फॉर कॉलिंग मी।

0: ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल

0: छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Sunny FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 5:03 हुए हैं और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी। मैं हूं आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

इस समय ठीक 5:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अक्सर लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो रातों रात बहुत अमीर हो जाएंगे, जिंदगी की सारी टेंशन खत्म, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बस एक बार लॉटरी लग जाए। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो आप जिंदगी में लॉटरी लगने के बारे में क्या सोचते हैं और इसे कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ अपने विचार शेयर कर सकते हैं। तब तक एंजॉय करते हैं इस कार्यक्रम का अगला गाना।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 5:31 हुए हैं और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। वैसे जिंदगी में लॉटरी लगने के मायने बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी एक लॉटरी की तरह होती है। जिस इंसान से आप शादी कर रहे हैं वो कैसा होगा, इसका पूरी तरह से शादी के कुछ साल बाद ही पता चलता है। काफ़ी हद तक ये बात सही है कि कितने सारे लोग लव मैरिज करते हैं, हमेशा साथ रहने की कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद ही उनका तलाक भी हो जाता है, यानी लॉटरी लगते लगते रह गई। तो ज़िंदगी में लॉटरी के कई सारे मतलब हो सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब तक इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।
3: गुड नाइट।
4: हाँ, गुड नाइट।
3: अच्छा, गुड नाइट।

वैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि कई बार लॉटरी में बहुत ज़्यादा पैसा मिलने के बाद इंसान उस पैसे को ठीक से संभाल नहीं पाता है। अगर उस पैसे को ठीक तरह से संपत्ति में या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो कई बार पैसा ऐसे ही यूं ही खर्च हो जाता है। लोग बुरी आदतों का शिकार भी हो जाते हैं और कुछ समय के बाद उनकी हालत पहले जैसे ही हो जाती है, यानी पैसे को संभालना भी आना चाहिए। वैसे मुंबई की बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि मुंबई की सड़कों पर रुपया उड़ता है। अब आपको इस रुपये को पकड़ने की कला आनी चाहिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 5:45 हुए हैं और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। वैसे लॉटरी में बहुत बड़ा पैसा मिले या ना मिले, लेकिन जिंदगी की लॉटरी ज़रूर लगनी चाहिए। और ज़िंदगी की लॉटरी कुछ भी हो सकती है, जैसे अपना टैलेंट दिखाने का कोई बहुत सही मौका, या ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा साथी, या अपने परिवार के साथ सुकून चैन वाली ज़िंदगी, या ठीक वैसी ज़िंदगी जैसे आप चाहते थे। हम कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी की असली लॉटरी है।

इस समय ठीक 5:51 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो लॉटरी क्या हो सकती है? जैसे 1973 में आई फिल्म जंजीर अमित जी के लिए एक लॉटरी साबित हुई। इससे पहले उनकी सभी फिल्में फ्लॉप हुई थी। फिल्म शोले में अमजद खान के लिए गब्बर सिंह का रोल एकदम लॉटरी साबित हुआ। 1994 में फिल्म आई थी, इस फिल्म ने सफलता के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म के निर्माता निर्देशक को भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। ये फिल्म थी हम आपके हैं कौन। कह सकते हैं कि उस समय ये फिल्म राजश्री बैनर के लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी साबित हुई। हर इंसान जिंदगी में ऐसी लॉटरी लगने का इंतजार करता रहता है, लेकिन हमें लगता है कि जिंदगी में सही दिशा में लगातार चलते रहना ही सबसे बड़ी लॉटरी है और ऐसी लॉटरी हर इंसान की लगनी चाहिए।

0: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
0: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
0: गर्मी की निहार है?
2: है।
0: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 6:15 हो रहे हैं। ये समय होता है कार्यक्रम अंदाजे बया का। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं गज़ल, सूफी संगीत, कवाली। एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए एफएम रेनबो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गज़ल से।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

इस समय ठीक 6:25 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां। इस कार्यक्रम में आज हम उन हिंदी फिल्मों की बात कर रहे हैं जिनकी गज़लें बहुत पसंद की गई। 1982 में आई थी फिल्म बाजार। इसके निर्देशक थे सागर सरहदी। फिल्म के कलाकार थे फारूक शेख, स्मिता पाटिल और नसरुद्दीन शाह। संगीत दिया था खयाम साहब ने। फिल्म को बहुत चर्चा मिली थी, तो सुनते हैं इसी फिल्म की कुछ बेहतरीन गज़लें।

6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाने वाला मैच। रेडियो ऐप से आप इसका सीधा प्रसारण सुन सकते हैं, दिल्ली से इसका प्रसारण होगा।

इस समय ठीक 6:51 हुए हैं और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अंदाज़े बयां। 1975 में एक फिल्म आई थी मौसम, जिसके निर्देशक थे गुलजार साहब। इस फिल्म के लिए शर्मिला टैगोर को बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इस फिल्म के संगीतकार थे मदन मोहन। 14 जुलाई 1975 को उनका निधन हो गया था। दिसंबर 1975 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसे मदन मोहन साहब को समर्पित किया गया था। तो इसी फिल्म से सुनते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन।

0: फुर्सत के रात दिन।
1: अब से कुछ ही पलों में यानी ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार मराठी में, और ठीक 7:10 पर होगा कार्यक्रम हम तो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 7:10 हो रहे हैं और ये समय होता है कार्यक्रम हम तुम का। तो चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने। तो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को बहुत ही खास करना है, यानी एक सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन इस गाने के बाद पहले इस गाने को हम सुन लेते हैं।

इस समय ठीक 7:19 हुए हैं और कार्यक्रम हम तुम की शुरुआत हो गई है। मशहूर फिल्म संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का नाम हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये दोनों सगे भाई थे। कल्याण जी बड़े भाई थे और आनंद जी छोटे। आज कल्याण जी वीर जी शाह की बर्थ एनिवर्सरी है। 30 जून 1928 को इनका जन्म कच्छ गुजरात में हुआ था, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर आज हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम में आज आप व्हाट्सएप के ज़रिए कल्याण जी आनंद जी के गानों की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और आप ये भी बताएं कि किस फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी को भारत सरकार ने बेहतरीन संगीतकार के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था।

इस समय ठीक 7:27 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम। और जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा तो लगभग बहुत सारे श्रोताओं ने सही उत्तर दिया है। उनका नाम है अजय साखरे इंदौर से, दीपाली शिरोडकर, पंकज मोहोर, चेतन कुमार, मीना जी, राकेश माथुर पुणे से, अरविंद कुलकर्णी, इन्होंने सही उत्तर दिया है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: जी हाँ, समय ठीक 7:33 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो और कार्यक्रम चल रहा है हम तुम। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गानों की लिस्ट भेज दी है, यानी एक से बढ़कर एक गानों की लिस्ट है। मैं सोच रही हूँ कौन सा प्ले करूँ और कौन सा नहीं प्ले करूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक और श्रोता है जिनका नाम है आरती शाह, मुंबई से लिखती है कि आज डॉक्टर भूमि काला का बर्थडे है, यानी उनके फ्रेंड है शायद, तो उनकी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए डॉक्टर भूमि काला जी, और यूं ही चमकते रहिए। तो आरती शाह के द्वारा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे श्रोता हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले, जी हाँ, अब से थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनके नाम हमने बताए, तो उन्हीं में से और भी कुछ श्रोता हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है, जैसे कि फिरोज सिंगनपुरिया जी, पंकज मोहोड़, संजय दर्शन, प्रणव शिंदे, इन्होंने भी सही उत्तर दिया है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। अरे

7:45 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो और कार्यक्रम चल रहा है हम तुम। 1974 में फिल्म आई थी कोरा कागज। इस फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। इस फिल्म में लता जी ने एक गीत गाया था, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। इस गाने के लिए लता जी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस फिल्म के संगीत के लिए कल्याण जी आनंद जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए सुनते हैं यही गाना।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर और मैं हूं आरजे किरणमाला। तो समय हमें बता रहा है कि अब आप टाटा बाय बाय कर दीजिए। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि 1992 में भारत सरकार ने कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। 24 अगस्त 2000 को कल्याण जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन क्या हम और आप उनके गानों को कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो, उनके सदाबहार गाने। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम हम तुम यहीं ख़त्म होता है। और हमारे स्टूडियो में इंग्लिश आरजे आ चुकी है। तो जैसा कि हमने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही उत्तर है सरस्वती चंद्र। तो लगभग सभी श्रोताओं ने सही उत्तर दिया था। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के

0: डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
2: Facilitating mobility.
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता

0: सतर्कता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि

0: अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for inter-departmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and

0: I left you by the house of fun. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 FM की लहरों पर सवार हैं आप। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंग महफिल, जहां सुरों की नरमी, अल्फाज की नफासत और एहसास की खुशबू एक साथ रूह हो जाती है। दोस्तों, गजल महज मौसिकी नहीं है, बल्कि ये दिल की वो जुबां है जो अक्सर लफ्जों से पहले बोलती है। हम खामोशियां बातें करने लगे जब तन्हाई हम नशी बन जाए, और जब यादें बिना दस्तक दिए दिल में उतर आए, तब एक गजल अता होती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, मिलना, बिछड़ना, इंतजार करना, माफ करना, लेकिन एक बात और सिखाती है कि जो इंसान अपने दिल को जिंदा रखता है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का मालिक है। तो आइए आज की इस महफिल का आगाज एक ऐसी गजल से करते हैं जिसके हर मिसरे में खुशबू है। मखमली आवाज के मालिक जगजीत साहब की आवाज में ये खूबसूरत कलाम आपके लिए।

कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल में बसने वाले जज्बात अगर सच्चे हों तो उनकी रोशनी उम्र भर काम नहीं होती। कहते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जिस दिल में मोहब्बत है वही दिल इबादतगाह है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ किसी एक शख्स से नहीं होती बल्कि मोहब्बत खुदा की बनाई हुई हर नेमत से होती है, इंसान से, रिश्तों से, प्रकृति से और उस सुकून से जो खामोशी में भी सुनाई देता है। गज़ल भी हमें यही सलीका सिखाती है कि हर अल्फाज को सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि उसे महसूस किया जाता है। एक अच्छा शेर हमारे भीतर, हमारे अंदर उतर कर हमारे ही दिल से रूबरू करा देता है हमें। तो आइए अब पेश है एक और गज़ल जिसके बोल सुनकर लगता है कि जैसे कोई अपने दिल का हाल अदब से बयां कर रहा है। बड़े सुकून से ध्यान से सुनिए।

0: 2.6 पर सवार हैं आप इस वक्त, खुर्शीद आपके साथ है प्रोग्राम रंग महफिल में। और साहब, कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल में बसने वाले जज्बात अगर सच्चे हों तो उनको रोशनी उम्र भर कम नहीं होने देती। बहरहाल, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। हर बात का जवाब अल्फाज से नहीं होता, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे सुबह की पहली हवा, शाम की ढलती धूप, या फिर किसी अजीज की याद जो बिना अल्फाज दिए दिल में उतर आते हैं। गजल की खूबसूरती भी है कि वो शोर नहीं करती बल्कि दिल के दरवाजे पर बेहद अदब से दस्तक देती है। हर शेर अपने साथ कोई सवाल नहीं बल्कि एक एहसास लेकर आता है। ये अगला कलाम आपकी नजर।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इनपुट चैनल। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद और प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल। कभी किसी सूफी फकीर ने कहा था कि जिस दिन तुमने अपने दिल से नफरत निकाल दी, उसी दिन खुदा तुम्हारे करीब हो जाएगा। और हम अक्सर मोहब्बत को सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित कर देते हैं, जबकि मोहब्बत तो एक नज़रिए का नाम है। किसी मुसाफिर की मदद करना या फिर किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ले आना, किसी गमजदा इंसान की बात सुन लेना, यही तो मोहब्बत की सबसे पाक सूरतें हैं। गज़ल भी हमें यही अदब सिखाती है कि दिल जितना नर्म होगा, ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत महसूस होगी। और अब पेश है एक ऐसी गज़ल जो दिल की गहराइयों से

जिंदगी हमें रोज कुछ ना कुछ सौंपती जरूर है, कभी खुशी कभी गम, कभी मुलाकात कभी जुदाई, लेकिन शायद सबसे बड़ा हुनर ये नहीं है कि हम कितना पा लेते हैं, बल्कि ये है कि हम कितना संभाल के रखते हैं अपने रिश्ते, अपने उसूल, अपनी तहजीब और अपने दिल की सफाई। क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो है जिसके दिल में किसी के लिए कीना नहीं है बल्कि दुआ है। और अब इस कलाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और हाँ, उनका भी ख्याल रखिए जो आपका बेहद बेहद ख्याल रखते हैं। मुझे खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, हेमा मेहरा से सुनिए एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में स्थानीय शांति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। श्री मोदी ने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया।

विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज शाम 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। अगले दो दिन से 3 दिनों में मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा विश्व कप में टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट पर 1-0 की बढ़त बढ़ा ली है। फिलहाल इतना ही। FM रेनबो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम का, जिसका नाम है जीरो आवर शो। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेडियो जलन के साथ। समय हुआ है 1:15। आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से लागू नए पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 8.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग और बेहतर अंतरविभागीय समन्वय पर बल दिया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं के सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल

और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज शाम 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को आज से समाप्त कर दिया गया है। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचों के तहत संचालित होंगे। फीफा विश्व कप में टेक्सास में नॉर्वे आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हुआ है 2:15। आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान से फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से लागू नए पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 8.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बैठक में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग और बेहतर अंतरविभागीय समन्वय पर बल दिया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को आज से समाप्त हो जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचों के तहत संचालित होंगे। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फीफा विश्व कप में नॉर्वे आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में भारतीय समय

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम यानी भुलाई ना बनेगा, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब सुनिए मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश शकियान से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया। सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से लागू नए पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 8.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बैठक में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग और बेहतर अंतरविभागीय समन्वय पर बल दिया है। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को आज से समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गए। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई में निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं। फीफा विश्व कप में नॉर्वे आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। ये थे FM रेनबो के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर अब समय हुआ है रात्रि के 3:03 और अब आप सुनेंगे मिडनाइट मेलोडीज में नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। शुरुआत करते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में अय्यारे फिल्म के इस गाने के साथ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर समय हुआ है आधी रात के 3:23 और आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज में नॉनस्टॉप म्यूजिक। तो ऐसे ही गानों का मजा लेते रहिए और झूमते रहिए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर अब समय हुआ है 3:54 और आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज में नॉन स्टॉप म्यूजिक। सुबह 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार और अभी के लिए आप एक सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया।

सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से लागू नए पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 8.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का फैसला किया है। यह परीक्षा बृहस्पतिवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को आज से समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राज्य में आज से लागू होने वाली ईवी पॉलिसी 2026 के तहत मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों का चरणबद्ध विद्युतीकरण भी किया जाएगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट्स सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ये 2 दिन चलेगा। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई में निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं। नेपाल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद कावर पालन चौक में 40,000 से अधिक बतखों मुर्गियों को मार दिया गया है। इस संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने स्वीडन पर 2 गोल की बढ़त बना ली है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे से खेला जाएगा। ये थे आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो के मुख्य समाचार।

सुबह के 4:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सारेगामा, जिसमें नॉनस्टॉप म्यूजिक का आप आनंद ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं अनुव जैन की आवाज में इस गाने के साथ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

अभी आपने सुना आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर सिंगल पापा वेब सीरीज से ये वाला गाना अमन पंत की आवाज में। सुबह के 4:37 हुए हैं और FM रेनबो पर सारे गामा में आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। अभी सुनिए कनिका कपूर और विलेन की आवाज में ये गाना।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। सुबह के 4:54 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सारेगामा। और अब इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनिए और उसके बाद सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे।